मुक्त पदार्थ नाम त्याई है रहाओ। पूजा तिलक करत इशनाना, छुरे कार लेवे हाथ दाना। वेद पढ़े मुख मीठी बाणी,

ब्रह्म विचारे गौड़ी महला पंजवा थिर कर वैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे कासवारे रहाओ दुष्ट दूत परमेसर मारे जानकी पैज रखी करतारे बादशाह शाह सा वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने निरपो होए भजो भगवान साध संगत मिल कीनो दान शरण परे प्रभ अंतरयामी नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी गौड़ी महला पंजवा हर संग राते भय ना जले हर संग राते माया नहीं छले हर संग राते नहीं डूबे जला हर संग राते सुफल फला सब पै मिटे तुम्हारे नाए भेड़ संग हर हर गुण गाए रहाओ हर संग राते मिटे सब चिंता हर स्यों सो रचे जे साधका मंता हर संग राते जम की नाही कान जम की नहीं कान हर संग राते जम की नहीं त्रास हर संग राते पूर्ण आस हर संग राते दुख ना लागे हर संग राता अंदन जागे हर संग राता सहज घर वसै हर संग राते भरम पौ नसे हर संग राते मत उत्तम होए हर संग राते निर्मल सोए कौ नानक तिन को बल जाए जिन को प्रभ मेरा बिसरत ना।

मेरे प्रीतम प्राण आधारा रहाओ, अंतर की पिद तुम ही जानी, तुम ही सजन सहेले, सर्व सुखा मैं तुझते पाए, मेरे ठाकुर अगह अतोले, वरना साको तुमरे रंगा, कुंडदान सुखदाते, अगम गोचर प्रभ अवनासी, पूरे गुरते जाते, परम पोकार।

अंडन कीर्तन रसन रमोरी तुम समर्थ अपार अत ऊचे सुखदाते प्रा प्राण अधोरे नानक को प्रभ कीजे कृपा उन संतन संग संगोरी गौड़ी महला पंजवा तुम्हार सेती राते संत हो नभाए लिहो मोको पुरख बधाते ओड़ पंचावो दाते रहाओ तुमरा मर्म तुम्हा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख बधाते राखो सरन ना दीन कौ करो हमारी गाते तरन सागर बोते चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पाते कार कृपा जिस राखो संगे ते पार पराते एत ओत प्रा तुम समर्था सब कुछ तुमरे हाथे ऐसा निधान दियो मोको हर जाने चले हमारे साथे निर्गुण आरे कौ गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर भेटे मन तन शीतल तरापे गौ

हर हर कबूना मनो बसारे इहां हो सर्व सुख दाता सकल घटां परत पारे रहाओ। महा कष्ट काटे खिन भीतर रसना नाम चितारे शीतल सांद सुख हर सरनी जलती अगर नवारे गर्भ कुण नरक ते राखे भौजल पार उतारे। चरण कमल आराधित मन माए जम की त्रास बदारे पूर्ण पार ब्रह्म परमेसर ऊचा अगम अपारे। गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म न हारे काम को लो मोह मालिनो

साध संग मिल हार वावे से गुणी गिहीर रहाओ जां को गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नाव निध सिद्ध जो जाने हर प्रभ धनी किश नाही ताके कमी करने हार बिछानिया सरसु रंग माणिया हार धन जां कै गृह वसै कौ नानक तिन संग दुख नसे गौड़ी महला पंजवा गर्भ बड़ो मूल इतनो रैन नाई गो जितनो रहाओ बिवर जत बे संतना हे हितना हार जवार जुआ बिदे इंद्री वस लै जितना हरण परन सपूरना चरण कमल रंग लितना नानक उदरे साध संग कृपा नित मैं दितना गौड़ी महला पंजवा मोहे दास रो ठाकुर को तन प्रभ का खाना रहाओ ऐसो रे ऐसो है रे खसम हमारा किन में सा सवार नहारा काम करी जे ठाकुर भावा

एक टेक को आधारा, जा नानक हर के लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा होमे तोरे, इस माटी ते ए मन होरे रहा। अज्ञानी मनुख पया जो नहीं सो लोरे, रहन अंधारी कारिया। कवन जुगत जित भोरा, परम तो भरम तो हारिया। अनक बिद कर टोरे, कौ नांग कृपा पई, साध संग निध मोरा। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मायरा। दीन दयाला पाल ब्रह्म, जाके सिमर सुख पाए। अकाल पुरख अगाध बोध, सुन जसो कूड अग खाए। कृपा निध प्रमया तार, नानक हर हर

गुर गुर गुर सद करिया, रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलहरिए राओ। जेते सास करा सम लेता, तेते ही गुण गाइया। जो हुए दयाल सतगुर अपना, ताह मत बुद्ध पाइया। मेरे मन नाम लय जां बंते छूटे, सर्व सुखां सुख पाइए। सेव समामी सतगुर दाता, मन वंशत फल पाइए। नाम इष्ट मीत सुध करता, मन संग तुहारे चाले। कर सेवा सतगुर अपने की, गुरते पाइए पालै। गुर कृपाल कृपा पवधारी, बिरसे सर्व अंदेसा। नानक सुख पाया हर कीर्तन, मिटो सगल कलेसा। राग गौड़ी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तिसना बिरले ही की बूझी है रहाओ, कोड़ जोरे लाख करोरे, माना होरे परे परे को लूजी है। सुंदर नारी अनक प्रकारी, प्राग्रह बकारी, बुरा भला ने सूझी है। अनक बंधन माया, परमत परमाया, गुंडित नहीं गाया। मन वेखे ही मैं लूजी है, जां कोरे कृपा करे, जीवत सोई मरा, साध संग माया तरे। नानक सो जन हर, दर हर सिजी है। गौड़ी मांझ महला पंजवा, सब को रस हर हो राओ। काहों जो काहों पो काहों ज्ञान, ध्यान काहों ध्यान काहों को डंड धार हो। काहों जाप काहों ताप, काहों पूजा हेम नेम, होम नेम काहों को गौण कर हो। काहों तीर काहों नीर, काहों वेद विचार, नानका भगत पिर हो। गौड़ी महला पंजवा, गुणित कीर्त मोरी राओ। तू ही रस तू ही जस, तू ही रूप तू ही रंग, आस ओट प्रतोरी। तू ही मान तू ही तान, तू ही पत तू ही प्राण, गुर टूटे लै जोरी। तू ही ग्रह तू ही बण, तू ही गौ तू ही सोना,

दियो दान कियो आहां सो मन रातो ओही पाठी ओही पोचा ओही प्यारो ओही रुचा मन ओह सुख जातो सर्ब के सहज केल आनंद खेर है फिर पै मेल नान गोर सब।

त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद लाग्यो राव मान अभान दोह समाने मस्क डार गुर पाग्यो संत हरकना आव दुखा रंग ठाकरे लाग्यो बास बसारी एके स्वामी उदयान दिष्टाग्यो निरपो भय संत प्रमंडारियो पूर्ण सरबाग्यो योगश करते कारण कीनो मां बुरो ना लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जाग्यो जन नानक उड़ तुहारी परयो आयो सरनाग्यो नाम रंग सह सुख रस माने फिर दुख नहीं ना लाग्यो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर सब सुमाया रहा लाथी पूतना सब लाथी चिंता सगल बसारी कल मस्तक गूरे धरियो मन जीतो जग सारी त्रिपत अकाय रहे रिद अंतर डोलन ते अब चूका अखुट खजाना सतगुर दिया टूट नहीं रे मुका अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बजाई लाहे परदा ठाकर जो भेटे हो तो बिस्ती तात पर आए कहो न जाई हो अचंभो सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच पै बगासा गुरु नर दे लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उपर राजा राम की सरनी सब लोक माया की मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ सात सिमरत वेद बिचारे महापुरख ने ओ कया बिन हर भजन नाही नसतारा सुख न किन्हू लया तीन भावगी लक्ष्मी जोरी बूझत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावा है फिर तो परहे परहे अनेक बलवा कर

भगत वशल तेरा बिरद रखाया जियो, पूर्ण सबनी जाई जियो, क्यों पेखा प्रीतम कमन सो करनी जियो, संतां दासी सेवा चरनी जियो, ए जियो बताई बल बल जाई जियो, तिसने मन लागा पाई जियो, पोथी पंडित बेल को जनता जियो, हुए बैरागी तीर्थ नमनता जियो, गीत नाद कीर्त गावंता जियो, हर निरभउ नाम त्याई जियो, पै कृपाल स्वामी मेरे जियो, पतत पवित्र ला गुर के पैरे जियो, परम पम का

वन त्रैंत्रे पंसोख परमानंदा जियो छे सुहावी ए मन बख्शिंदा जियो पेख दर्शन ए सुख लइए जियो चरण पखार करी नित सेवा जियो पूजा अर्चा बंधन देवा जियो दासन दास नाम जप लेवा जियो बिनो ठाकर पै कहिए जियो इस पुन्नी मेरी मन हरा तन हरिया जियो दर्शन पिक सब दुख पर हरिया जियो हर हर नाम जपे जप तरिया जियो

दीप उजियाला सुमरंतर प्रीतम बाला कर कृपा मेरा चित लाया सतगुर मोको एक बजाया एक निरंजन गुरमुख जाता दूजा मार सद पछाता एको हुकम वरते सब लोई एक ते सब उत्पत होए राह दोए खसम एको जान गुर का शब्द हुकम पछाण सगरू वर्ण मन माई कहो नानक एको सलाई गौड़ी महला पहला अध्यात्म कर्म करे ता साचा मुक्त भेद क्या जाने काचा ऐसा जोगी जुगत बिचारे पंच मार साच उर तारा रहाओ जिसके अंतर साज वसावे जोग जुगपत की कीमत पावे राव सह एक गृह उद्याने करनी कीर्त कर्म समाने एक शब्द एक भिख्या मांगे ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे पैरच रहे ना बाहर जाए कीमत कौन रहे लिवलाए आपे मेले परम चुकाए गुर प्रसाद परम पद पाए गुर की सेवा शब्द विचार हमें मारे करनी सार जापत संयम।

इमां गए भरत सील संतोखं रोग ना व्यापे नान जम दोखं मुक्त भये प्ररूप ना रेखं जोगी कौ कैसा डर होए रूख बिरख ग्रह बाहर सोए रहा निरपो जोगी निरंजन त्यावै अंधन जागे सच लिव लावे सो जोगी मेरा मन भावे काल जाल बड़ा अग्नि जारे जरा मरण गद गर्भ नवारे आप तरे पितरी नसतारे

अब अंतर सेवा मन तरपतासया अलख भेवा जय जय देखूं तै तै साचा बिन बूझे झगत जग काचा गुर समझावे सूझी होए गुरमुख बिरला बूझे कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भय बताले गुर कया अवर नहीं दूजा किसको देख करो अन पूजा संत हेत प्रतृपण धारे आत्म चीने सो तत् बिचारे सच हृदय सच प्रेम नवास प्रणत नानक हम ताके दास गौड़ी महला पहला ब्रह्मे गर्भ किया नहीं जानिया वेद की विविध पड़ी पछतानिया जय प्राभि सिमरे तही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसारे जिस गुर मिला उस गर्भ नवारे रहा बल राजा माया अहंकारी जगन करे बो भार उफारी बिन गुर पूछे जय खो प्यारी हरि चंद दान करे जस लेवे बिन गुर अंत ना पाए अपेवै आप लाए आपे मत देवे दुर्मत हरनाक दुराचारी प्रभ नारायण कर प्रहारी प्रहलाद उधारे कृपा धारी पुल्लो रामन मुग्द अचेत लुल्टी लंका शीस समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहु मत कीट में खासा हरनाक ले नखे बदासा दै संगारे बिन भगत ब्यासा जरा संध काल जमन संगारे रक्त बीज काल नेम बदारे दै संगा संध सतारे आपे सतगुर शब्द बिचारे दूजे भय दै संघारे गुरमुख साज भगत तिन सतारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई

सब सुरति मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण ना जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाईयां, सिद्धां पुरखां कियां वड्याईयां, तुद बिन सिधि किने ना पाईया, करम मिले नाहीं ठाक रहाईया, आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा, असा महला पहला, आखां जीवां बिसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलियह दुख, सो क्यों विसरै मेरी माई, साचा साहिब सच है नाई रहाउ, साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिल कह आखण पाहे, वड्डा न होवै घाट न जाई, ना हो मरै न होवै सोग, देंदा रहे न चूकै भोग, गुण एहो होर नाही कोए, ना को हुआ ना को होए, जे वडे आप ते वड तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसार हैं ते कम जात, नानक नावें बाज सनात, राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुरदेव मौको राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलै त्रिपतासहि, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जमपास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास, राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवै उद्दम, जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मैं जनते उपाय, ता कारजक आगै कर धरिया, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनिता, कोई न किसकी तरिया, सिर सिर जग संबाहे ठाकुर काहे मन पहु करिया, उडे उड आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मै सिमरन करिया, सब निधान दस अष्ट सिधानु, ठाकुर करतल धरिया, जर नानक बर बर सदबल जाइयै, तेरा अंत ना पारा वरिया, राग आसा महला चौथा, सो पुरखे को ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमागमी अपारा, सब त्यावै सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सिरजने हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावो संत हो जी, सब दुख विसारण हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा,
ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਬਿਡਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹੋ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਬਖਾਣਾ ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ ਹਰ ਤਿਆਵੈ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਤੂਟੀ ਜਮਕੀ ਫਾਸੀ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ ਸੇ ਤਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ

तू निचल करता सोई, तुदे आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहें सो होई, तुदे आपे सृष्ट सब उपाही जी, तुदे आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सबसे का जानोई अस महला चौथा। तू करता सचियार मेंढा साई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई रहाऊ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करहें तर नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया। तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाऊ सब तुझ ही माही, तुझ बिन दूजा कोई नाही। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा यवर न कोए। तू कर कर वेख जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सर भरड़ पहले निवासा। पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पगनी चल है, हम देखा तह डूबी आले। मानू एक ना चेत समूढ़ मना।

पुरख मुग्धा जन्म भया, प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरिया। सा महला पंजवा।

सुखी बसै मोरो परिवार, सेवक सिख सभै करतारा। मोर रक्षा निज करदै करै, सह बैरन को आज संघरै। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याहूं, जो बर चहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक

अवतरम काल पाए कर विषन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताही हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट की पट पट की जाने जब उद करख कर

मूड़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चिन्त न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनद भिन्न भिन्न तो हे तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह वे सजा प्रथम संसारा। एक है रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कई भूपा। अंडज जेहरज सेतज कीनी, उद्भुज खानू बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमड़ पयो संकर कैठा। सगरी

घरों दुष्ट जेते उठो तुदपाता सगल मलेश करो ऋण कहता जे अस तुझ तब शरणी परे तिनके दुख दुगत हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याए है ताके काल निकट न आए है रक्षा हुए ताहीं सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तन कमो हर हो हृदय सिद्ध करमो सब होई दुट शाह छवै सकै ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहीं उबारा।

जीअड़ा अग्न बराबर तपै, पितर वगै काती, प्रणवत नानक हुकम पछाणै, सुख होवै दिन राती। तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद तिहाई। सुख हो टल गुर सेवीय।

Oh, God. Rimane sa que tu me dis pas Rimane. Ese level. का खोज पर जो कोई ससा सो

0: मतलब कॉटन है। आराम तो आराम से लागू आराम को कहीं को भी कम जान जो आराम बोल के
1: हे राम के
0: हम्म। फिर हम कहा देवा पहन तार ले

कभी दिया गया था या मानता नहीं है, बाल बाल थे ना कहीं ताकि बल ही कार नामे के देवता देवराज जी ने पदे जोड़े को अरे उनका सतना व्रता पर कर प्रसाद मेरी संगत कोई सोच दिन रात मेरे धर्म को डलता जब को माती राम कसैया जी के जीवन मन अवसर लो मैं जन तेरा रहाओ मेरी हरो चित जन करो करवाई चंद कौर विदास परू तेरी सभा बेग मिलो जन करे नाम बेला पा एक बड़ा शहर को बनाऊं दुगा दो ना तस वस कर आय न माल कौपन कसन तस मार अब मोहूब यत वतना जय पाई मो गया तो मेरे पाई नाम का आय दाई मुसना पाई।

पाती गुण गावी नौ जय जय दो। तन पर धारा पर निंदा सुप्रीत निवार चंदम से वीर गंत्र जीवे कली काल में ये नानक ना तुम्हारा

चरण कमल आधार जनका रास पूंजी एक तान मान दीवान सचा नानक की प्रभ टेक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवा दीन दर्द निवार ठाकुर राखे जन की आप तरन तारन हर निध

साहब तेरी बड़ियाई कोई ना हुन जाने मेरा वाहिगुरु। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक ली त्याई फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जय डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दया वै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुई सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अंडर कीता तिन्हां प्यारियां सियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हिस्से दे ते बंद मन कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियार ने चराए गए गुरद्वारियां की सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्मनी हारे सिखी गए सां सवासा ना निवाही तिन्हां दी कमाई दा ते अंदर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ते अंदर के बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जतावे चतावन का सदका सब सुख होवे जा जा खालसा जी साहिब तां तां रछिया रहा देख देख फतेह बिरध की पै पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखन सिखी दान केस दान रह दान वेख दान विसाह दान प्रोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी इनान चौंकियां झंडे वंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पादा रखा अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा साही दा तार जीव श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण निताणियां दे तां न्यूटियां दी ओड़ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पातशाह जीओ आप जी की अपार बख्शे कृपा दयालता सदका अमृत वेले दीवान गदरी बाबिया इतिहासक स्थान गुरद्वारा साहिब स्टोकन विखे सजाए गए सजे दीवाना च पंजा बाणी का नितने मासा जी की वार दे शब्द कीर्तन पावन बाणी का का पावन बाणी का पाठ कीर्तन नितनेम करद्या पातशाह जी कीर्तन करद्या बेअंत फुला अगों वास्ते सोझी समत प्रदान करनी दाराइया संगतां दीआं सेवावां पिटावां हाजरियां प्रवान करनियां गुरमत अनुसार सब दे कारज रास करने समुचियां संगतां वल्लों ते हावल कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजर दर प्रवान होवे प्रवान प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा नाम जपे कृपा करो पातशाह जी दाराई संगत नूं इलाही श्री मुख वाक बख्श के सुना के निहाल निहाल करो सही प्यारे मेल जिन्हां मेरा तेरा नाम चेता वे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पई अकाल की सो सिखन को हुक्म है गुरु गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभ को मिल बोचा है राज करेगा खालसा वार हुए सब मिलांगे बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वार गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु,

वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु

करही पंचराग्नि संग उचरही। प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावे बंगली, पुन असलेखी की पई बारी, ए भैरो की पांचो नारी। पंचम हरख दे साख सुनावहे, बंगालम माधव माधव गावहे, ललित बिलावल गावही अपनी अपनी भांत। अष्टपुत्र भैरव के गावह गायन पात्र। द्वितीया माल कौसके आलापहे, संग रागनी पांचों थापहे। गोण करी अरदेव गंधारी, गंधारी सिहुति उचारी।

कालंका कुंतल और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौराव कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक।

0: असंख जाप असंख भाओ,
1: असंख जाप असंख भाओ,
0: असंख पूजा असंख तप ताओ,
1: असंख पूजा असंख तप ताओ,
0: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ,
1: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ,
0: असंख जोग मन रहे उदास,
1: असंख जोग मन रहे उदास,
0: असंख भगत गुण ज्ञान विचार,
1: असंख भगत गुण ज्ञान विचार,
0: असंख सती असंख दातार,
1: असंख

इस जग में वड़ियाई पाई पूरे कर ते नाम ते आई जै देखा तेरह समाई सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई पूरे भाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निदान दिखाया गुर का शब्द अत मीठा लाया नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया राग बलावल महला चौथा घर तीजा इक्यों ओंकार सतगुर प्रसाद उदों मत प्रभ अंतर जामी ज्यों प्रेरो तों करना ज्यों नटवा तंत बजाए तंती त्यों बाजे जंत जना जप मन राम नाम रसना मस्तक लिखत लिखिए गुरु।

मत यूथ फुल उठाई। आ जाने कछु जंजारा है बुदनी फोरा ऊंच ऊंचा बीच न खींचा। हाँ तेरा तू मोरा एक अंकार एक बसार एक अपर पारा एक बसीन एक सपून एक प्राणो दारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा अंत न अंता सदा बेअंता कौ नानकी ऊंचो ऊंचा। वृंदावन मोहल्ला पंजवां बिन हर कामने आवत ही जासो राजमार तो लागे ओ मुनि महावते राव। कणकावनी से सोनी छोड़खिने में जावते होजरो इंदिरा पेरो बिखेत गौरी खावतरे। तिनको मंदिर सा सवारियो पाव गतरे जरावत रहे। ऐसे गढ़ में ऐठो ठीलो फूल फूल क्या पावते। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गए प्राप्त ही। लेटनवाभियान ज्ञानी सोए रो मरमावते। जाल बसा चोग बिसारी पंखी जो फुआवते। कौन नानक बंद कर गुम सद गुरु पूर्ति आवते ही। बिलावल मोहल्ला पंजवां हर ना पार मोली प्राण प्रारो मने आधारो खीत चितवों जय पान तमोली राव। सह समायो गुरु बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम मुख लागे जोंबड़ भागो सागम सुहाग मारो कतन डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली। कौ नानक पैरवी सुहागन हट निकी मेरी बनी फटोली। बिलावल मोहल्ला पंजवां गोविंद गोविंद गुरु मेरी जाते भेज साडिया तपते दुर्म दूर पैराव। पूर्ण पूर्ण पूर्य पूर्ण सीधर शान दयाल दई। का करो तृष्णा अहंकारा तंते हुए सगल खई। सस दो दया धर्म सुच संतन ते हो मत लई। कौ नानक जिन मनु पछाना तन को सगली सोज पई। बिलावल मोहल्ला पंजवां क्या मैं जी जंड बिचारे पर न साके करमाई। ब्राह्मी सिद्ध मुनिंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथे कथ कथन न जाई। जय जय देखा तेरे असमाई राव। जय माँ प्यार दूख जम चुनिए ते मेरे प्रातु है सुहाई। सर पर्यो हर चरण गए प्रा गुरु नानक को बूझ बजाई। बिलावल मोहल्ला पंजवां गम रूप अबनासी करता पर पवेक नहीं कुछ पाइए। आचार्य सुनो परता भेट ले चरण चरण मन लाइए। किर विदे के संज पाइए कौ सुजन के जुटि थे राव। जो मनुख मनुखी सेवा हो तिसकी लई लई पुन जाइए। नानक शरण शरण सो सागर मोहे टेक तरह कुनाइए। बिलावल मोहल्ला पंजवां संत सरण सुन टहल करी तंड बंद हर सब जंजारो हर कहा ते छूट पजाओ। सो सहज करो आनंदा गुर ते पायो नाम हरी। ऐसो हर रस बरन सागो गुर पूरे मिली उलत तरी। पेख्यो मोहन सब के संगी उन काउ सगल परी। पूर्ण पूरी कृपा कौ नानक मेरी पूरी परी। बिलावल मोहल्ला पंजवां मन क्या कहता हूँ क्या कहता जान पर ठाक प्रा मेरे तिस आगे क्या कहता राव। अनमोल को तू ही पछाने जो जी मैं होता रे मन काय कहाँ लोग बह के जो पेट ही संगत सुनता। ऐसे जान पे मन ध्यान अभी वो करता कौ नानक गुर पै दियारा हर अंगन कबू लेता। बिलावल मोहल्ला पंजवां निंद के ऐसे ही चर पर गे निशाने सुनो तुम पाई। जो कालर पीज गिरी राव जो देखे छिद तो निंद को माए पलो दे दुख पर गे। हार पै चित नहीं पहुँचे बड़ो चितबत चितव मर गे। निंद का प्रभु पुलाया काल नेरे आया हर जानसो बाद उठर गे। नानका राखा प्रा स्वामी क्या मान सब परे करिए। बिलावल मोहल्ला पंजवां
ऐसे काय फूल परे करे करावे मुकर पावे पे सुन सरदा संग हरिराव।

वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु।

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय वाय वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु।

वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु